रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।

0: It's 1:30 p.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: इल्म आगाही, तंजो मजा और खुशहालियों इस्तेहकाम का हसीन संगम। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डॉक।
3: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: रोजाना 4 से 5 बराह रास्त स्टे विद अस।
1: केसन टी टाइम शो।
2: ये दौर केसन है, ये जमाना केसन का है, ये गूंज ये आवाज जो हर सू है, हर लब पे है, हर जुबान पे है, हर घर में है। ये फकत आवाज नहीं है, ये एतमाद है, ये रिश्ता है, रिश्ता जो आपसे बन चुका है, रिश्ता जो एतमाद का है, यकीन का है, भरोसे का है। किसन नेचर्स पर एतमाद का शुक्रिया।

सबसे बढ़कर जो है ये बाहर के खाने जो होते हैं, जो आप जिंगर बर्गर मंगवाते हैं या शामी अंडर शामी वाला जो है आप बर्गर मंगवाते हैं, ठीक है जनाब, पिज्ज़ा खाते हैं, समोसे खाते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जनाब जो जब आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मोटा करती है। सबसे ज़्यादा मोटा करने वाले जो जंक फूड है ना वो पिज़्ज़ा और बर्गर हैं। बर्गर और पिज़्ज़ा, अगर आपने एक बर्गर समाप्त फरमाया, यानी कि अगर आपने एक बर्गर खाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो है आज की रात का खाना नहीं खाया। रात का खाना आप कितना खाते होंगे या दिन का खाना कितना खाते होंगे, दो रोटियां खा लेते होंगे, बहुत ज्यादा खा लें तो ढाई रोटी खा लेंगे, तीन रोटी खा लेंगे, लेकिन कहते हैं कि जब आपने एक बर्गर खाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 6 से 7 रोटियां खाई हैं, ठीक है जनाब। जब आप एक बर्गर शरीफ खाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 6 से 7 रोटियां खाई हैं। अब आप सोच रहे होंगे खलील भाई आपको कैसे पता चला कि 6 से 7 रोटियां, तो भाई ये निजाम कैलोरीज का होता है, ठीक है जनाब, कि कौन सी चीज के अंदर कितने कैलोरीज होती हैं, आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है खाने के लिए। तो इसी तरीके से जो है एक रोटी जो है उसके अंदर जितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है जनाब, या 3 रोटियों के अंदर जितनी कैलोरीज होती हैं, या 7 रोटियों के अंदर जितनी कैलोरीज होती है ना, एक बर्गर के अंदर उतनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है जनाब। इसी तरीके से जब आप पिज्जा खाते हैं तो पिज्जे का एक स्लाइस जो होता है, ठीक है जनाब, वो तकरीबन 3 से ज्यादा बल्कि 4 रोटियों के बराबर हो जाता है। यानी कि आपने एक पिज्जा नहीं खाया, आपने 4 से 5 रोटियां खाई हैं, वो आपको तो आप तो दो दो स्लाइस भी खा जाते हैं ना उसके, ठीक है जनाब। लेकिन कैलोरीज की बात होती है कि कैलोरीज जो होती है ना वो किस चीज के अंदर कितनी ज्यादा होती हैं। तो ये पिज्जा हो गया या जना बर्गर हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इनके अंदर कैलोरीज आप कभी देखें, ये बोतल आप जब पीते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो पीछे लिखा होता है हाउ मच कैलोरीज, ठीक है जनाब, उसमें लिखा होता है पर सर्विंग कैलोरीज कितनी है, यानी कि टोटल बोतल के अंदर कितनी कैलोरीज को डाला गया है, और जब वन सर्विंग आप एक बंदा पिएगा एक गिलास तो वो कितने इनटेक करेगा कैलोरीज। तो ये कैलोरीज का सीन होता है जनाब। और इसी तरीके से चावल की एक प्लेट जब आप खाते हैं, चावल की एक प्लेट यानी कि आपने 2 रोटियां खा ली नॉर्मल है, लेकिन अगर आपने एक प्लेट चावल की खा ली तो इसका मतलब है आपने 4-5 रोटियां खा ली, ठीक है ना। चावल के अंदर भी कैलोरीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। तो भाई ये होता है सीन खाने का, और इसके हवाले से मैं आपके साथ चार्ट शेयर करूंगा, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जो वेट कम पेट कम है उसके बॉक्स के अंदर ही ये चार्ट हम आपको डाल कर दें, ठीक है जनाब, और इस चार्ट की मदद से आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सके, ठीक है जनाब। डाइट को हम नहीं कंट्रोल करते, ठीक है जनाब, और वेट कम पेट कम खा रहे होते हैं तो फिर कहते हैं कि उस तरीके से तो फर्क तो नहीं पड़ रहा। आप अपनी डाइट को थोड़ा सा कम कीजिए, एटलीस्ट इन चीजों को जरूर कम कीजिए जो आपका वजन बढ़ा रही है, जो एक्स्ट्रा चर्बी का सबब बन रही है, ठीक है जनाब, थोड़ा बहुत अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे बहुत जल्द आप लोगों को वेट कम पेट कम के बॉक्स के अंदर जो है इसका चार्ट हम बताएंगे, ठीक है जनाब। उसी चार्ट के मुताबिक आप अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे कि एक दिन में आपने अगर चावल खाने हैं तो कितने खाने हैं, मोटे अगर हो गए हैं, ठीक है जनाब, चिकन पीस खाना है तो कभी कभी, अच्छा ये इस तरह नहीं होता कि अगर आपने बर्गर जो है बिल्कुल भी नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि अगर आप महीने में एक दफा पिज्जा खा लेते हैं इट्स ओके, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जनाब। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनकी आदत होती है हर दूसरे दिन जनाब जो है वो कॉल करके जो है पिज्जा मंगवाना या फिर बर्गर हर दूसरे दिन या रोजाना, ये उन लोगों को मोटापा होता है। जो महीने में 1-2 दफा जो है हंटिंग कर लेते हैं इट्स ओके, उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो रूटीन बना लेते हैं जनाब इन चीजों को, जो कि रूटीन की चीजें नहीं है, ये मजे की चीजें हैं, और इनसे मजे लिया करें जनाब, इसको रूटीन का हिस्सा अपनी डाइट का हिस्सा ना बनाए।

जो अंदाज जी जी ना बात जो है वहाँ से निकली कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे पिक्चर भेजी हुई थी कि किसी ने ये पैकेज बनाया हुआ था ऑयल शैम्पू और साथ में वेट कम पेट कम जो है फक्की को इस्तेमाल यानी कि वो पैकेज बनाया। तो ये पैकेज ईद तक आप लोगों के लिए है, जरूर इसको एंजॉय कीजिए और इससे ढेर सारा फायदा उठाइए। आप लोगों के लिए जो है जो जो चीज डिजर्व करता है ना उस बंदे के लिए हमने वो चीज बनाई है, ठीक है जनाब। अब ये मैं आप इस वक्त जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि जनाब इस वक्त मार्केट में आपको आप मार्केट अगर करते हैं मार्केट जाते हैं और फेस वॉश जो है अक्सर जो है आप जाते हैं तो एक ही फेस वॉश होता है जिसको मेल भी यूज करते हैं जिसको फीमेल भी यूज करती हैं और एक ही तरह का तकरीबन कंपनियों का जो है आपको एक ही मिलेगा। इंडिया के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी हैं इंडिया के अंदर चूंकि वो हमसे कॉस्मेटिक में बहुत आगे हैं, नेचुरल चीजों के डेरिवेशन में वो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं तो वो नई नई चीजें लेके आते हैं और हमारे माहिरीन भी ऐसी दुश्मन

इंडिया जरूर है हमारा, ठीक है जनाब, लेकिन अच्छी चीज आपको कहीं से भी मिले ना वो आपको सीखनी चाहिए, ठीक है जनाब। अच्छी चीज आपको कहीं से भी मिलती है ना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल कर रहा हो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब चीन तो बुद्ध माता है भाई, वो क्या सिखाएंगे हमें इल्म, ठीक है जनाब। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि इल्म के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े तो चीन भी जाओ, तो क्या वहां पर इस्लामिक आपको इल्म मिलेगा? नहीं, वो तो बुद्ध मत है, ठीक है जनाब। लेकिन बात हो रही है किसी और नॉलेज, किसी और इल्म की, यानी कि दुनिया के इल्म का भी जो है इस्लाम हमें कहता है कि भाई सीखो, दुश्मन से सीखते हो, दुश्मन भी सिखाता है तो उससे भी सीखो, ठीक है। वो एक एक मुझे याद नहीं आ रहा, एक जंग का वाक्य है कि जिसमें कुछ जो है कुफार को कैद कर लिया जाता है और उनमें से कुछ जो है पढ़े लिखे थे, ठीक है जनाब, जिनके पास इल्म ज्यादा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मुकर्रर किया कि भाई इतने बंदों को आप जो है पढ़ा दो, हमारे इतने मुसलमानों को पढ़ा दो तो तुम्हारे लिए माफी है। तो भाई गुंजाइश बहुत ज्यादा है और दीन हमारा ना ही सख्ती है, बड़े आसान मजहब है हमारा और ऐसी तलकीन करता है कि जनाब आप इल्म कहीं से भी हासिल कर सकते। तो मैं बात कर रहा था कि इंडिया की कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने खवातीन के लिए स्पेशल फार्मूला फेस वॉश बनाया और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हम पहली कंपनी है कि जिसने ये काम किया है और ये बेड़ा हमने उठाया है, क्योंकि खवातीन डिजर्व करती हैं, उनके लिए कुछ खास होना चाहिए, ठीक है जनाब। हमारे इस वक्त जो है 4 किस्म के फेस वॉश है, लेकिन उनमें एक फेस वॉश ऐसा है जो कि स्पेशल फार्मूला फॉर वुमेन, ठीक है जनाब, और वो खवातीन के लिए है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्या इसमें उन्होंने क्या ऐसा डाला है जो कि खवातीन के लिए स्पेशल है। तो जो चीज मैं अब आपको बताऊंगा ना कि भाई क्या चीज आप फेस वॉश में डालें तो वो पर्दादार फेस वॉश बन जाता है। पर्दादार फेस वॉश

जी जनाब, पर्दे वाला विश्वास है जनाब, क्योंकि ये खवातीन के लिए है। लेकिन मजे की बात है, जब हमने इस विश्वास को लॉन्च किया था ना, जो स्पेशल फॉर वुमेन फार्मूला है, तो लड़कियों से ज्यादा लड़के लेने के लिए आ गए थे। उन्हें पता चला ये कोई खास चीज उन्होंने खवातीन के लिए बनाई हुई है, तो हम ना रह जाए। ठीक है जनाब, तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लड़के हमसे लेके गए किशन शॉप के ऊपर। हम कहते थे भाई क्या करते, कहते नहीं वो घर वालों को लेके जा रहे हैं, लेकिन वो ले अपने लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कोई खास चीज तो इन्होंने डाली है इसके लिए, जो सिंफ नाजिक के लिए बनाया। तो हमारा जो प्योर व्हाइटनिंग फेस वॉश है, किशन का प्योर व्हाइटनिंग फेस वॉश, लवली फेस वॉश जिसको हम कहते हैं जनाब, ये जो है ये बहुत ही स्पेशल फार्मूला फेयरनेस और व्हाइटनिंग का है। अच्छा, एक चीज होती है व्हाइटनिंग और एक होती है फेयरनेस, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है जनाब, ये एक चीज नहीं है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। व्हाइटनिंग और फेयरनेस जो होती है ना, दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो व्हाइटनिंग का क्या, व्हाइटनिंग का मतलब होता है जनाब ब्राइटनेस आपकी स्किन के ऊपर, लेकिन जो फेयरनेस होती है वो कुछ और चीज है। वो ये है कि आपकी स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे है ना, और वो हटाने वाली चीज जो होती है ना, उसको बोलते हैं ये फेयरनेस है, फेयरनेस। ठीक है जनाब, आपकी स्किन के ऊपर क्लैरिटी लाती है, फेयरनेस लेके आती है। सो ये फेयरनेस फेस वॉश प्लस व्हाइटनिंग फेस वॉश है। प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश जो केसन का है, ये फेयरनेस फेस वॉश है। अल्लाह को जान देनी है इस वक्त, वो पुराने लिसनर हमारे पास अगर सुन रहे हैं तो काइंडली कॉल या फीडबैक करेंगे। ठीक है जनाब, लेकिन नहीं तो मैं उनके भी आपके ऊपर आपको बताता चलूं कि बहुत सारी फीमेल ने जब हमारा ये फेयरनेस प्लस व्हाइटनिंग फेस वॉश इस्तेमाल किया, लवली फेस वॉश, तो उन्होंने कहा भाई हमने जब इसको एक डेढ़ माह यूज किया तो हमें तो क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक दो, यकीन कीजिए, लिटरली मैंने एक दो फीमेल से पता किया कि आप क्रीम पहले लेके जाती थी केसन की नाइट क्रीम, आजकल आप दूसरा महीना नहीं लेके जा रही। तो उन्होंने कहा आपने अपने पाओं के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। मैंने कहा क्या, कहते आपके लवली फेस वॉश ने इतनी फेयरनेस और इतनी वाइटनिंग दे दी है कि अब जरूरत नहीं पड़ती कि कौन रात का जो है अजाब संभाले और रात को क्रीम भी लगा ले, यानी कि इतना प्यारा ये फेस वॉश है। तो भाई डेरा के लोग जानते हैं लवली फेस वॉश को, केसन का लवली, ठीक है ना। लवली फेस वॉश और कंपनी को भी होंगे मेरे ख्याल में एक दो के हैं, लेकिन केसन का जो है उसका नाम है प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश। पिंक कलर का ये फेस वॉश है, इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू, इसका मटेरियल, जैसे आप खोलेंगे तो ये क्रीम की तरह निकलेगी, मक्खन मलाई है जनाब। ये कोई जेल वाला फेस वॉश नहीं है, ठीक है जनाब, ये कोई शैम्पू से बना हुआ फेस वॉश नहीं है, ये क्रीमी फेस वॉश है। ठीक है जनाब, क्रीमी प्लस मिल्की फेस वॉश, कि जब ये फेस वॉश से निकलता है तो बताता है कि भाई कोई चीज है। ठीक है जनाब, और थोड़ी सी मिकदार ले लेंगे तो इतनी प्रीमियम क्वालिटी का हमारा फेस वॉश है, स्पेशली खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए भाई। और मैं, यकीन कीजिए, मैं आपको बताऊं कि स्किन केयर रूटीन में जो लोग अच्छे फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं ना रेगुलर, उनको कभी भी इंटेंस किस्म की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही उनको क्रीमों की तरफ जाना पड़ता है, ना ही उनको सीरम की तरफ जाना पड़ता है। ये कौन लोग होते हैं जो इतने बड़े बड़े मसले लेकर डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं? ये वो खवातीन होती हैं जो अपनी डेली स्किन केयर रूटीन, जो उनकी डेली की रूटीन है, उसको फॉलो नहीं करती हैं, ना ही क्लिनजिंग दो दफा करती हैं, ना ही उनकी लाइफ में फेस वॉश। किसी भी ऐसी फीमेल से आप पता कर लें जिनको बहुत ज्यादा छाइयां हों, जिनको बहुत ज्यादा दाग धब्बे हों, तो उससे पूछ लें बहन ये बताओ तुम्हारे पास कोई फेस वॉश है? आप उसे पूछें बिठा के, तो वो बोलेंगे नहीं भाई मैंने फेस वॉश तो कभी नहीं लगाया है जी ना। तो फिर छाइयां भी आएंगे, फिर चेहरा भी खराब होगा। अगर अब वो कहते हैं ना कि महंगा रो एक बार और सस्ता रोए बार बार, जो बचत करता है फिर आखिर में डॉक्टर के पास जाकर ना 10,000 रुपए इकट्ठे देने पड़ते हैं, और जो रूटीन में 200-300 रुपए का अच्छा फेस वॉश यूज करते रहते हैं तो ना ही उनके चेहरे को परछाइयां आती हैं, ना ही दाग धब्बे आते हैं, फेयरनेस, चेहरा फेयर रहता है, और जो व्हाइटनिंग होती है वो भी विजिबल होती है। तो ये जो फेस वॉश है हमारा जो हमने बनाया, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके पर लिखा हुआ है द स्पेशल फेयरनेस एंड व्हाइटनिंग फार्मूला फॉर वुमेन। ठीक है जनाब, ये बात आपको इंडिया में मिलेगी या पाकिस्तान में केसन कंपनी में मिलेगी। और आज तक आपने मार्केट में लड़कियों के लिए स्पेशल फार्मूला फेस वॉश नहीं देखा होगा। अब बात आती है कि क्या है इसके अंदर, दावा कर रहे हैं ना हम, दावा कर रहे हैं कि ये सिन्फ नाजिक के लिए है, ये खवातीन के लिए है, ये लेडीज के लिए स्पेशल फेस वॉश है, तो इसके अंदर ऐसा क्या है? तो भाई इसके अंदर जो है वो जो चीज ऐड की गई है जनाब, नंबर वन इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड, नंबर टू इसके अंदर नियासिनामाइड, और नंबर थ्री जो इसको इम्तियाजी हैसियत देता है जनाब, वो है जनाब जो अनार होता है, पोमीग्रेनेट जिसे कहा जाता है जनाब, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। और खवातीन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जनाब इससे जबरदस्त फार्मूला,
और कोई नहीं हो सकता जो ये एक्सट्रैक्ट अपना कमाल दिखाता है। और जब फीमेल इस फेस वॉश को यूज करती है तो उनको समझ आ जाती है कि इससे पहले मैंने जो फेस वॉश लगाया था उसका क्या इम्पैक्ट था और अब जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो किस तरीके से मुस्बत तरीके से मेरी स्किन को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है।

0: खानी है।
1: जी जनाब, पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट जो है वो डलने से आपकी स्किन के ऊपर जो बीमार बीमार सा चेहरा लगता है रौनक नहीं होती, लेकिन अब उस रौनक को बहाल करेगा। आपकी स्किन की क्लैरिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर जो मौजूद है वो स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएशन उसकी होती है, नियासिनमाइड जो होता है वो भी व्हाइटनिंग इफेक्ट रखता है, और साथ में पोमीग्रेनेट। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म का ये फेस वॉश है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि भाई अगर आप में से किसी ने भी हमारे इस फेस वॉश को एक दफा ट्राई कर लिया, एक दफा जिस भी बहन ने जिसने भी भाई ने इस फेस वॉश को खरीद लिया, वो कभी भी जिंदगी भर इसको चेंज नहीं कर पाएगा। चेंज करेगा, कोई और लेगा, फिर भी इसकी तरफ लौट के आएगा, क्योंकि जनाब इसकी बहुत कम क्वांटिटी जो है वो झाग बनाती है। ठीक है जनाब, इसका विजिबल इफेक्ट जो है स्किन के ऊपर आता है, और ये ना सिर्फ आपके ग्लो को बढ़ाता है बल्कि ये साथ साथ में आपके ऑयल कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। केसन का प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश ये आपके स्किन का ऑयल कंट्रोल करने में भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। और गर्मियों में तो मेरे ख्याल में कि जनाब फेस वॉश से आपको हटना भी नहीं चाहिए। अगर आप स्किन के ऊपर ताजगी चाहते हैं, रिफ्रेशिंग फेस चाहते हैं, ग्लोइंग फेस चाहते हैं, और जनाब ये चाहते हैं कि ऑयल निकल कर आपके चेहरे को ब्लैक ना कर सके, तो भी बिल्कुल केसन के फेस वॉशेस का इंतखाब कीजिए। और स्पेशली आज जो हमने बात की है वो डिजर्विंग पीपल के लिए, कि जनाब जो लोग जी खवातीन को स्पेशल फार्मूले को डिजर्व करती हैं और उनके लिए स्पेशल फार्मूला होना चाहिए जो उनकी स्किन के मुताबिक, क्योंकि मर्द और औरत की जो स्किन होती है वो किसी तरीके से भी एक तरह की नहीं होती है। ठीक है जनाब, तो फार्मुलेशन इसलिए सेपरेट बनाई जाती है कि ये उनको ज्यादा फायदा पहुंचा सकेगी। तो क्या प्राइस है इसकी? 100 ग्राम का ये हमारा फेस वॉश है, पिंक कलर का ये फेस वॉश होगा। इसके अंदर फेस वॉश जो है व्हाइट कलर का होता है। ठीक है जनाब, यकसम तौर पर मर्द और औरतें दोनों यूज कर सकती हैं, लेकिन स्पेशली ये फार्मूला जो है वो खवातीन के लिए है, क्योंकि पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट जो होता है यानी जो अनार का अर्क है वो खवातीन की स्किन को टेक्सचर को बहुत ज्यादा सूट करता है, और बहुत जल्दी ही गुलाबी पन आपकी स्किन के ऊपर आ जाएगा जब आप यानी कि बिल्कुल बेबी पिंक, जिस तरह बच्चों की गाले पिंक कलर की होती है वैसे ही आपको ये केसन का लवली फेस वॉश जो कि प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश है ऐसी ही स्किन देने की सलाहियत रखता है।

0: जनाब, पहला मैसेज हमें जो रिसीव हुआ पड़ा है वो ग्लोबल एफएम 91 डियर इस्माइल खान से। अच्छा जी, जो मैसेज करते हैं ना, तो स्टार्ट में भाई अपने एफएम का नाम लिखा करें ताकि मुझे गौर ना करना पड़े एंड के ऊपर कि कौन सा नाम है और कहां से है। तो कोशिश कीजिए अपना नाम लिखा कीजिए। तो दानिया हमारे साथ जो है मौजूद है, कहते हैं भाई आपने कल कहा था कि हाजमे के लिए तो ये हाजमा कंट्रोल सिरप ले जाती हैं, और वालदा के लिए मोटापे के लिए वेट कम तो पेट कम, तो मैंने कहा था स्किन के लिए भी कुछ लें, तो ये कह रहे हैं कि भाई स्किन का भी सोच रही हूँ कि कुछ ले लूं केसन का, और हो सकता है कि कल आ जाऊं आपकी शॉप के ऊपर। जी आए, और स्किन के लिए तो भाई बहुत ही प्यारी दो क्रीमें हमारे पास मौजूद हैं। एक केसन की ग्लूटा वाइट क्रीम है जो कि फेयरनेस को बढ़ाती है, ब्राइटनेस को बढ़ाती है, स्किन को क्लियर करती है, छाइयों दाग धब्बों को खत्म करती है, और दूसरी हमारी जाफरानी क्रीम जो कि सिर्फ नाइट क्रीम है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उसी के साथ भाई लड़कियों वाला फेस वॉश, अब मर्दों वाले फेस वॉश से थोड़ा सा पर्दा कीजिए, और घर के अंदर जो है केसन का खवातीन वाला फेस वॉश, प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश लाइए। 400 रुपए इसकी कीमत है, 400 रुपीज इसकी प्राइस है, और आप इसे किसी भी उस फेस वॉश के साथ कंपेयर कीजिए जो क्रीमी फेस वॉश है, ठीक है जनाब। जेल टाइप फेस वॉश की बात नहीं कर रहा, जो क्रीमी फेस वॉश होता है, यानी कि फोमिंग फेस वॉश, क्रीमी मिल्की फेस वॉश के जब वहां से आप निकालें तो वो क्रीम की तरह फेस वॉश निकले, ये एक जो है प्रीमियम किस्म का फार्मूला होता है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है आपकी स्किन के लिए और इम्पैक्टफुल होते हैं ये फेस वॉश। तो हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है इन्हीं फेस वॉशेस की मैन्युफैक्चरिंग को चुना था कि हमारे फेस वॉश जो है वो क्रीमी फेस वॉश। तो कल आप आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने क्या खरीदना है, लवली फेस वॉश या फिर ग्लूटा फेस वॉश, इन दोनों में से आपकी चॉइस होनी चाहिए। और गो पिंपल भी है जो कि एक्नी वालों के लिए है, और चारकोल फेस वॉश भी है ऑयली स्किन वालों के लिए। आमिर अमान पाकिस्तानी हमें सुन रहे हैं जनाब ग्लोबल एफएम 91 से, और सलाम खलील भाई कैसे हैं, लाजवाब है ग्लूटा वाइट क्रीम, ग्लूटा वाइट सोप के कितनी प्राइस है। लास्ट में चाचा अमानुल्लाह राही को सलाम कह रहे हैं। अच्छा जी, ग्लूटा क्रीम इन्होंने ले ली है और कहते हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन कह रहे हैं कि साबुन कितने का है। 250 रुपए का साबुन है। फतेह मोड के ऊपर हमारे बहुत सारे यूजर हमें सुनते हैं जी, उनका बेहद शुक्रिया, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ के ग्लोबल एफएम 91 अब दूसरी दफा जब ये स्टार्ट हुआ है तो मैं देख रहा हूँ कि किस इलाके से ज्यादा हमें रिस्पांस आ रहा है, ठीक है ना, कौन से इलाके के लोग जो है वो जागे हुए हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो रिस्पांस और जो ऑर्डर हमें ग्लोबल एफएम 91 के प्रोग्राम स्टार्ट होने से आ रहे हैं वो फतेह मोड़ के आसपास जितने लोग हैं जी, बहुत शुक्रिया। और वहां पर दुबई जनरल स्टोर है, रहमान शॉपिंग सेंटर है, और साथ में फहद जनरल स्टोर है, डियर इस्माइल खान की मैं बात कर रहा हूँ, फतेह मोड़ के पास। तो वहां से माशाल्लाह जो फहद जनरल स्टोर है वो भाई आप यकीन कीजिए कि 4 दिन पहले आए थे, बहुत सारा सामान लेके गए, ठीक है जनाब, और आज फिर सुबह सुबह आए, आज भी बहुत सारा, यानी कि पहले भी 2 कार्टन लेके गए, आज भी 1 कार्टन लेके गए माशाल्लाह, और नई नई चीजें लेके जा रहे हैं जो पहले थोड़ी थोड़ी लेके गए थे, अब वो ज्यादा ज्यादा, यानी कि 2-2 दर्जन जाफरानी क्रीम, 2-2 दर्जन जाफरानी साबुन, हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम 2-2 दर्जन, यानी कि इस तरह की वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमारे कस्टमर मौजूद हैं, और जो नए लोग हमारे साथ अटैच हुए हैं तो वो भी बढ़ चढ़ के खरीद रहे हैं। तो भाई बहुत शुक्रिया, हैट्स ऑफ यू पीपल जो फतेह मोड़ के आसपास हैं, या फतेह शहर के साथ, या कुरैशी मोड़ के आगे जितने लोग मौजूद हैं और ग्लोबल एफएम 91 को वो सुन रहे हैं, और ग्लोबल एफएम 91 को सुनते ही ये रिस्पांस कर रहे हैं। तो जनाब बेहद शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं सोच ना पाऊं दिल ये फकीर तेरे दर पे गिरा। मोहम्मद अजहर पहाड़पुर से जनाब, और कहते हैं कि ग्लूटा वाइट क्रीम की प्राइस क्या है। अच्छा जी, केसन की जो ग्लूटा वाइट क्रीम है उसकी कीमत है 350 रुपए, और विजिबल वाइटनिंग देगी जनाब आपको। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सब सुनने वालों को सलाम, मोहम्मद अजहर फ्रॉम पहाड़पुर, ठीक है जनाब। ओके जी, एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मोहम्मद हमजा खेमटा फ्रॉम मूसावाली पिपला से। जी जनाब, आज ग्लोबल एफएम 91 का मुकाबला लगा हुआ है पहाड़पुर के साथ, के एक मैसेज ग्लोबल एफएम 91 का, एक पहाड़पुर का, लेकिन टांग का अभी तक हमें कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। देखते हैं कि वो कॉल करते हैं या उनके मैसेज भी आए हुए हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, अगले महीने से बहुत जबरदस्त किस्म के हम आप लोगों के मुकाबले करवाने जा रहे हैं जनाब, तीनों शहरों के दरमियान, पहाड़पुर, डेरा और टांग के दरमियान ये तीन ग्रुप हम बड़े बनाएंगे, ठीक है जनाब, एक्टिविटीज और आप लोगों के कंपटीशन कराएंगे, और कॉलर्स का कंपटीशन भी होगा, मैसेजेस का कंपटीशन भी होगा, ठीक है जनाब, और तीनों शहरों के जो लोग होंगे उनका एक ग्रुप मेंबर भी होगा, ग्रुप लीडर भी होगा, ताकि हम जो गिफ्ट भेजेंगे वो उसी ग्रुप लीडर को भेजेंगे, और उसके थ्रू जो है उनको हम जिस तरह पहले होता है आपको पता होगा जो हम कंपटीशन करवाते हैं, तो उसमें एक ग्रुप लीडर भी होता है, ठीक है जनाब, और वो ग्रुप लीडर जो है फिर सब चीजों को होल्ड कर रहा होता है। एक कॉलर इस वक्त जी हमारे साथ आ चुके हैं और उनको मैं इस वक्त मौका दे रहा हूँ। जनाब मेहरबान भाई हमें ग्लोबल एफएम सॉरी जी रेडियो पैगाम पहाड़पुर से अस्सलाम वालेकुम। जनाब जनाब मेहरबान भाई किवें हाल इन सही, मैं कल ही तो कुछ याद करना पिया दिली दिली कि मैं के लो इना दे नहीं मुके हाले तक कटैया नहीं मुके जो वापस नहीं है वाला के साडो
1: जी जी पहले ही तो फोन हमने कॉल फोन हम सर जी।
0: अच्छा वा तोरे हुन कटैया वगैरह खत्म थी के लो खत्म थी के
1: जी जी सर जी।
0: अच्छा चलो माशाल्लाह वा तो हुन आज के वक्त के रकम ते लगे बदेवे पहाड़पुर तुहाडी आवाज सिर्फ पहाड़पुर च नहीं बल्कि डेरा दे लोग ही सुनदे बैठे हैं ते टांग दे लोग ही सुनदे पैन, आज तुहाडी आवाज त्रियां शहरां च वैंदी पई है।
1: जी हां जी
0: हां के आखसो सिंह के पैगाम है तुहाडा अज दे शो दे हवाले नाल सारे हवाले दे नाल कंपनी दे हवाले नाल दसो जरा इक।
1: जी सर जी आवाज कटिंदे पई।
0: अच्छा जी मैं के कोई पैगाम है तुहाडा सही
1: सर जी कोई कोई बात नहीं के केसन को लेंदे रहो
0: लोग बा केसन को लेंदे रहो ना यो तो पैगाम है सबको बड़ा पैगाम तो यो है के केसन को लेंदे रहो हैं जी ओके जी वो मेहरबानी शुक्रिया जनाब मेहरबान है ये मजदूरी करने वाले जो है एक हमारे भाई हैं चलती फिरती मजदूरी करने वाले बंदे हैं लेकिन एक दफा केसन के प्रोडक्ट लेके गए हैं तो अब इनकी पूरी फैमिली केसन है। पहले पहले मुझे याद है शिफाय दर्द लेके गए थे फिर उसके बाद हाजमा कंट्रोल सिरप लेके गए फिर उसके बाद आयल और शैम्पू लेके गए फिर उसके बाद ग्लूटा वाइट रेंज फिर जाफरानी साबन फिर परफ्यूम यानी कि माशाल्लाह अब इनकी फैमिली जो है प्रॉपर मैं आपको कहता हूँ कि एक दफा आप हमारी चीज खरीदेंगे ना इंशाल्लाह ये जो हम टांग में पैकेज दे रहे हैं 1000 रुपए की 5 चीजें आजकल क्या मिलते हैं मुझे बताइए क्या ये हम अपनी जेब से आप लोगों को दे रहे हैं ये 5 चीजों के कोई 1000 रुपए नहीं बनते लेकिन जनाब ये 5 चीजें जो हम आपको दे रहे हैं ना ये 1000 रुपए हमारी खरीद भी नहीं होंगी समझ रहे हैं ये 1000 रुपए में चीजें जो हम आपको दे रहे हैं ना ये हमारी खरीद भी नहीं होगी जो हमारी खरीद होती है 5 चीजों की सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए वो जुमला इस्तेमाल होता है ना कि कंपनी की मशहूरी के लिए तो बिल्कुल जनाब कंपनी की मशहूरी के लिए ही हम आप लोगों को ये दे रहे हैं 1000 रुपए की इतनी सारी चीजें आप लोगों को दे रहे हैं। एंड अब्दुल हादी टांग से हैं जी हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल हादी हमारे साथ हैं जनाब अल्लाह दी शुक्र है अब्दुल हादी तुसे सुनो चंगे वदे वे ठीक ठाक मौसम चंगा है आज तुम्हारे पास
1: माशाल्लाह
0: निकले तो गर्मी के मजे तो नहीं होंगे थोड़ा बदल शदल हो तो बाद मजा आंदा है चलो कल बारिश गुजरी इतना असर तो हो सी इतना शदीद मौसम तो नहीं हो सी बारिश का असर तो होंगे कुछ दी बार एक डोली टांग ते सूरज नजदीक है बिल्कुल तुसा जेरे इलाके पे आवे ना सूरज नजदीक थी मैंने तोरे पता है तो अगू
1: दो नजदीक थी मैंने
0: थोड़ी जाग चेंज करो तुम्हारी ऊंचा इलाका है सूरज के नजदीक थी मैंने तुसा ई मुझे को गर्मी ज्यादा होंगी तुम्हारे ते पहाड़पुर ते होंदे सवेरे प्रोग्राम ना उत्थे सारा मॉर्निंग शो होंदा ओ कित्ता वध्या वे तोर पहाड़पुर आ गई टांग दी तरफ जी अच्छा पर टांग की थोड़े थोड़े जिया ते आवे दे पहाड़पुर एफएम। जनाब नेटवर्क इशू होते बाजू का सारी चीजें आप एक दूसरे को नहीं सुना पा रहे होते। अच्छा जी मोहम्मद हमजा खेमटा कहते हैं मूसा वाली पिपला से हमारे साथ मौजूद है जनाब। और इंसान जितना भी मजबूत बन जाए कुछ लम्हे ऐसे जरूर आते हैं जो उसे अंदर से हिला कर रख देते हैं। कहते हैं खूबसूरत प्रोग्राम है, आप भी बहुत खूबसूरत हैं शहजादे। अस्सलाम वालेकुम गड़ा शहबाज तड़मा शे अब्दुल हादी, मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, हमें तो तड़पता सिर्फ खुदा ने देखा है। हम तनाई में बैठ कर रोते हैं, लोगों ने तो सिर्फ हमें देखा है। जी जनाब बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब कॉल ड्रॉप हो गई, मैंने जल्दबाजी की, एक ही कॉल के ऊपर उनकी कॉल ले ली। एनी हाउ जी खलील अवान साहब कैसे हो, इमरान मरवा डिस्ट्रिक्ट टांग से हैं जनाब हमारे साथ। हम तो 88 एफएम पर आपको सुन रहे हैं। और शिफाय दर्द ऑयल का क्या तरीका कार है, आपने कल यही मैसेज किया था, आज फिर आपने वही मैसेज किया। कल भी मैंने आपको बताया था कि शिफाय दर्द ऑयल जो है ये पट्ठों के अंदर जान डालने वाला तेल है। ये कुदरती तौर पर आपके जिस्म की सूजन जो होती है ना, आपको कभी भी कोई चोट लगे, आपका एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर आपकी स्किन फट जाए, ठीक है जनाब, फटी हुई स्किन के ऊपर ये ऑयल नहीं लगाना, ठीक है जनाब, जख्म के ऊपर ये ऑयल नहीं लगाना, प्लेन जो होती है ना स्किन उसके ऊपर आप इसको लगाना है, ठीक है जनाब। तो इसको आपने फटी हुई, आप जब अंदर से खोलते होंगे तो इसके अंदर लीफलेट होता है, उसमें तफसील लिखी होती है, पढ़ा करें जरूर। ये हम 4-5 रुपए का खर्चा करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर एक पंपलेट होता है, उसको पढ़ा करें यार, ठीक है, वो आप हमारे 3-4 रुपए ना पढ़ के जाया कर देते हैं। आप उसको पढ़ा करें, उसमें हिदायत होती हैं, उसमें आपके लिए फायदा होता है कि इस चीज को इस्तेमाल किस तरह करना है, किस वक्त करना है, किस तरीके से करना है, उसको जरूर। आप बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं और फेंक देते हैं, पढ़ते नहीं है, उसको क्या जरूरत है पढ़ने की, वो आपके लिए हम डालते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि फटी हुई जगह के ऊपर, जख्म के ऊपर आपने इसको नहीं लगाना, जो भी जगह है मुतासर जगह उसके ऊपर 8-10 कतरे डाल के आपने मसाज करना है, तो इंशाल्लाह कुछ ही देर के अंदर, बिल्कुल जनाब कुछ ही देर के अंदर दर्द जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम केटिया भाई, आज सुबह आपके शो का इंतजार किया था लेकिन रिकॉर्डिंग लगी हुई थी, आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, हम सब सुन रहे हैं, वेट कम पेट कम, फकी ने तो कमाल ही कर दिया है। मेरी 12 साल की बहन बहुत जो है स्मार्ट हो गई है, जो कुछ दिन पहले चल नहीं सकती थी, मेरी अम्मी ने आपको बहुत दुआ दी है, अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे, आमीन। इरम शहजादी पहाड़पुर से है, ठीक है जनाब, सांक वालों सुन रहे हो, कैसा प्यारा बनाती है कैसन कंपनी आप लोगों, क्योंकि हमारा स्लोगन यही है कि प्यारा लगना तो आप सबका हक है, ठीक है ना। और कैसन हर वो प्रोडक्ट आप लोगों को प्रोवाइड करेगी जो आपको प्यारा बनाने में मुआविन है। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कॉल कट गई। तो इरम शहजादी पाठपुर से हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह इन्होंने वेट कम पेट कम को खरीदा है और इनकी बहन जो है माशाल्लाह स्मार्ट हो गई। बहुत सारी, यकीन करिए, बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते इस वजह से रुके होते हैं क्योंकि लोग मोटी लड़की को पसंद नहीं करते, उनको पता है शादी होनी है तो फिर तो इसने बलाएं बन जाना है, ठीक है जनाब, तो इस पहले से जो है वो स्मार्ट लड़की देख रहे होते हैं। तो भाई उन लोगों के लिए, उन खवातीन के लिए, उन लड़कियों के लिए भाई जो ओवर ईटिंग करती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती हैं और उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो ये प्रोडक्ट हमारी जरूर खरीदें, केसन वेट कम पेट कम। और उससे आप देखें कि जिस तरह ये इरम शहजादी पहाड़पुर से बोल रही हैं, और यही दुआएं होती हैं जो इंसान की कामयाबी की तरफ लेके आते हैं, जब लोगों को डिजायर रिजल्ट मिलते हैं किसी चीज के। और अल्हम्दुलिल्लाह केसन वो कंपनी है कि आप हमारे कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और जो डिजायर रिजल्ट आपने दिल में सोचे होंगे इंशाल्लाह इस्तेमाल के बाद आपको वही मिल रहे होंगे। बहुत शुक्रिया जी जनाब। और गौन है हमारे साथ दुरे अदंद यूजर ऑफ ओनली केसन नेचुरल पाकिस्तान, मोहतरम उस्ताद जी अटेंडेंस लगा दे, मुकाबलों का नाम ना लें उस्ताद जी प्लीज। उस्ताद जी हाँ जी जी कहती है कि भाई नाम लाल है मुकाबलों का है जी। मुकाबलों में तो मजा भी बहुत आता है, और क्या है कि लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं ना, है जी। सलाम भाई, आपके शो पहले की तरह मस्त है, और आप सराय की बड़ी अच्छी आती है आपको, आप सराय की बड़ी अच्छी आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी आवाज। आजकल हमारे दोस्त पहाड़पुर के नहीं आ रहे, पहाड़पुर के नहीं आ रहे हैं ना, कोई मैसेज आते हैं, सब सुनने वालों को जानती हूँ।
2: नाम तेरा
0: जी
2: रब्बा
0: जनाब, अच्छा जी,
2: मैं
0: कौन है
2: सोच
0: ये
2: ना
0: मैसेज, फिर
2: पा।
0: कॉल आ गई, कॉल को मौका दे रहे हैं। कॉलर को अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम।
0: जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे? 3 दफा आपने कॉल की और 3 दफा आपने कॉल की थी, वो आई दिस कॉल अवेरी।
3: मैं ये खान से हूँ और मेरा नाम महानवीर है।
0: आप डेर इस्माइल खान से हैं, आप क्या
3: मेरा नाम महानवीर है।
0: महानूर है? कौन सी उर्दू वाली महानूर या कोई और महानूर है ये?
3: नहीं सर, मैं और हूँ ना। नहीं
0: अच्छा, आप कोई और महानूर है, वो वाली नहीं है?
3: मैं और हूँ।
0: अच्छा, और हैं आप महानूर, कैसी हैं आप, ठीक हैं?
3: ठीक है, आप सुन सर,
0: मैं बिल्कुल जी ठीक हूँ। प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं, कब से शुरू किया सुनना आपने?
3: महीना हो गया सुन रही।
0: 1 महीना हो गया है, तो हमारी बातों का कोई असर शसर हुआ है, जो सारी बातें सर के ऊपर से गुजर रही हैं?
3: जरूर है, लेकिन आप शौक का नहीं पता तो यही पता कर रही थी।
0: अच्छा, समझ आई है बातों की कुछ की? तो आपकी
3: जी
0: आपकी जरूरत की कोई चीज है केसन में, जो आपको ढूंढ रही थी और आपको नहीं मिल रही थी, या आपने दूसरी कंपनियों के इस्तेमाल किया और आपको फायदा नहीं मिल रहा था, तो कोई ऐसी चीज आपको नजर आई है हमारी कंपनी के अंदर?
3: सर, वो है शौक का नहीं पता तो वो पता कर रही थी।
0: अच्छा जी, कौन सा सोप आपने लेना है?
3: तो गुलशन कैरी से मिलती होती है।
0: हाँ, गुलशन कैश एंड कैरी पर जाएं आप, वहां पर जो सोप का रैग लगा होता है ना, जहां पर सोप पड़े होते हैं सारे नेचुरल, ठीक है, तो वहां पर जाएंगे, केसन के सारे सोप लगे होंगे, ग्लूटा का सोप, जफरानी सोप, मिल्की सोप, राइस का सोप, कोजिक एसिड सोप, उपटन का सोप, सारे सोप उधर पड़े होंगे, जो भी आपको चाहिए हो आप वहां से ले लें,
3: ओके
0: ठीक हो गया?
3: ठीक है।
0: ओके जी, बहुत शुक्रिया। मानूर थी हमारे साथ और साबुन ढूंढ रही है लड़की, है जनाब। तो साबुन इंशाल्लाह जो है आप जब खरीदेंगे हमारे साबुन को इस्तेमाल करेंगे। मैं जो फतेह मोड़ की बात कर रहा था, वो भाई पिछले हफ्ते ना हमसे 1 दर्जन जाफरानी साबुन लेके गए, और आज 2 दर्जन लेने के लिए आ गए, यानी कि टोटल 4-5 दिन गुजरे हैं उनको, और यानी कि लोगों ने इतना पसंद किया कि वो 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा और उसके बाद आज फिर 2 दर्जन लेने के लिए आए हुए थे। अच्छा जी, और ये कौन है जिनका मैं मैसेज पढ़ रहा था? असलाम, मेरा दोस्त कोई नहीं है, आप बनोगी हैं? वो है दिस लड़की, किधर मैसेज कर दिया तुमने? रोनी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया रोनी आपका, थैंक यू। अच्छा जी, और कौन है? अमजद कुरैशी खलील भाई, आपको और सब सुनने वालों को सलाम हो गया। जी जनाब, ये जो है पहाड़पुर का जो FM है उसके ये ग्रुप लीडर हैं, और डॉक्टर अमजद कुरैशी, और अभी इनको पता चला गया फिर मुकाबले होने वाले, तो मैंने अब टीम को जो है तैयार करना है।
2: जो खो गया वही पाया तुझे यहाँ।
0: अच्छा जी, पहाड़पुर में कहते हैं कि आवाज कट रही है। अच्छा जी, वो सिग्नल का इशू होता रहता है, लेकिन मैं फिर भी मैं चेक करता हूँ। वाई दिस कॉल अवेरी, नहीं जा रही है, तीनों स्टेशन के ऊपर आवाज तो बिल्कुल भी सही, 101 हाँ जी 100% सही जा रही है। कभी कभी नेट रिसेप्टर का भी मसला होता है, आगे से अगर नेट कमजोर हो तो फिर भी मसला हो जाता है। आमिर आमिर हुसैन, हाँ जी। अच्छा जी, सलाम जी, अमीर हुसैन कहते हैं, और डेर इस्माइल खान में एक ग्रुप होता था, उसका नाम था फ्यूज ग्रुप, फ्यूज ग्रुप, तो ये फ्यूज ग्रुप का हिस्सा थे, और ये कहते हैं कि फ्यूज ग्रुप को फिर से जाग जाना चाहिए डेरा वालों का और टांग वालों का मुकाबला करने के, पहाड़पुर वालों का मुकाबला करने के लिए। कॉलर हमारे साथ हैं जनाब, और उनको मौका देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जनाब अली।
0: जनाब मोहतरम, कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना? खिजर याद बात कर रहे हैं भाई, कैसे हैं आप? ठीक है,
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खलील भाई?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम आज कॉल किया आपने, लगा सर?
1: नहीं, पहले वो आपका शो शुरू हुआ था पहले दिन।
0: अच्छा, पहले दिन कॉल की थी, फिर इतना अरसा, फिर इतना इतने दिन फिर इंतजार करके आज?
1: ऐसा है भाईजान, जो चीज इस्तेमाल नहीं की हो ना, तो इस्तेमाल कर ले उसके बाद घंटी करे तो वो जरूर अच्छी लगती है।
0: अच्छा, तो आपने माशाल्लाह कुछ कुछ खरीदा आपने फिर केसन का?
1: तेल खरीदा था, कारगिल बॉडी में दर्द था।
0: अच्छा शिफाए दर्द आपने तेल खरीदा हमारा?
1: जी वो खरीदा था, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बाजू का दर्द खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह उसी।
0: अच्छा माशाल्लाह, ये हमारी तीसरी शहादत है टांग से हमारी शिफाए दर्द के हवाले से।
1: टांग वाले तो खरीद भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो आपने लगाया ये पहले शुरू कुछ दिनों का हुआ है, तकरीबन इंशाल्लाह टांग वाले इस्तेमाल करेंगे।
0: हाँ बिल्कुल, नहीं हमें बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, हमारा ये जो शुतुरमुर्ग का तेल है ना शिफाए दर्द, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि आज तक लोगों ने ऐसा कोई तेल ना देखा था ना कभी किसी कंपनी ने लॉन्च किया। जड़ी बूटियों के तेल तो हर किसी के पास है, जड़ी बूटियों वाले, ठीक है, लेकिन इस तरह
1: सब कंपनियों का तेल, क्योंकि ये तो रोजाना के प्रोग्राम चल रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: इसी आश्रम से चल रहे हैं तकरीबन जो प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन हमने पहली बार खरीदा, भी पहली बार है क्योंकि किसी कंपनी का और तेल में नहीं खरीदा
0: आपने, ठीक है?
1: जी पहली बार, क्योंकि खरीदा भी है इस्तेमाल भी किया था जी।
0: तो आप मुतमईन है केसन शिफाए दर्द से?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मुतमईन है।
0: अच्छा, अगर इसी हालत के साथ अभी किसी डॉक्टर के पास जाते तो आपका ढेर सारा खर्चा हो जाना था, एक्सरे?
1: आजकल डॉक्टर के पास जाए पहले तो 1000 रुपए उसकी फीस है, उसके बाद 3-4 हजार की दवाई दे देते हैं।
0: ये बाजू का जो दर्द होता है ना, बाजू का दर्द, आप यकीन कीजिए कि आपको 3000 की दवाई लिखी जाती, 1000 रुपए फीस और 3000 की दवाई, और उसके बाद इतना सुकून नहीं आना था जितना ये शिफाए दर्द को। आपकी बोतल पूरी लगी भी नहीं होगी मेरे ख्याल में।
1: नहीं सर जी, मुझे तो तकरीबन 4 दिन हुए हैं, 4 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ।
0: तो 4 दिन में तो आपको पहले दिन ही फर्क आ गया होगा, समझ आ गया होगा काफी फर्क पड़ गया।
1: आप अब्दुल हादी को कह रहे थे ना टांग का?
0: हाँ
1: वो टांग नहीं, वो तकरीबन आपसे बहुत दूर है, वो तकरीबन वो तीन कुलाची के साथ है।
0: हाँ कुलाची, हाँ उस साइड के ऊपर, तो वो फिर पहाड़पुर को सुना जाए।
1: वो अब्दुल हादी उसी जगह पर,
0: अब्दुल हादी बात सुन लो, ड्रामा कर गया हमारे साथ है, कहते टांग में आवाज आती
1: है। नहीं एफएम तो टांग का सुन रहा है, कोई बात नहीं है, एफएम तो टांग का वो तकरीबन शमूलियत भी करता है, हर प्रोग्राम में उसकी शमूलियत होती है, क्योंकि मुझे तकरीबन जब से ये टांग का एफएम शुरू हुआ है हम खुद ही सुन रहे हैं, इस तकरीबन हमारा काम ही ऐसा है, हम बार बार रहते हैं, ये प्रोग्राम होते हैं, हम होते हैं,
0: आप सुनते रहते हैं। चलो ठीक है जी, खिजर हयात नाम आपने बताया, खिजर बलोच नाम बताया?
1: खिजर हयात जरा बलोच, खिजर हयात,
0: खिजर हयात बलोच जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी हमारे एक ऐनी शाहिद बन गए कि भाई ये प्रोडक्ट वाकई काम करती है, और इंशाल्लाह ये आपको बहुत देर पास सुकून देगी, एक दो दिन वाली बात नहीं होगी कि लगाया तो आराम आ गया फिर दर्द शुरू हो गया, नहीं, इसको एक हफ्ता इंशाल्लाह दो दफा मालिश करें, आपके पट्टे मुकम्मल तौर पर सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच जनाब। ये भाई टांग वालों, ये प्रोडक्ट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट है, और ब्लेसिंग आप लोगों को महसूस होनी चाहिए कि भी आपके इलाके में भी ये प्रोडक्ट आ गए। जिस तरह उद्दीन असद भाई कह रहे थे कि भाई टांग वाले नहीं खरीदेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, जी हमारा नुकसान तो नहीं है। सो भाई ये प्रोडक्ट आज तक आप लोगों को ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिली है जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए, जो कि ऑस्ट्रिच ऑयल है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिच बोलते हैं शुतुरमुर्ग को, ये उसका तेल है और कुछ जड़ी बूटियां शामिल है इसके अंदर, और ये कुदरती तौर पर सूजन को खत्म करता है, कुदरती तौर के ऊपर, ये आप सूजन अगर आपको बॉडी के अंदर हो ना, सूजन हो जाए तो सेरेशोपेप्टिडाइज एक टैबलेट होती है वो मिलती है, जैसे कि डेंजीन डीएस, इस तरह की टैबलेट खानी पड़ती है आपको, ये खाने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको सूजन को कुदरती तौर पर खत्म करेगा जी। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर है हमारे साथ।
4: वालेकुम सलाम
0: जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, कौन इंसान नाल नाल से सोपड़ा से सादिक अली भाई लाने पर सादिक भाई की हाल अच्छे वदे वे ठीक ठाक
4: शुक्र है जी अल्लाह की मेहरबानी तो सुन सुनो तो भी सेहत की
0: आज सवेरे ऐसा तो याद की थी पैसे सवेरे सईद उर रहमान मेरे कॉल की थी हां जी ते तुम्हारा जिक्र थी है बस है
4: अच्छा ठीक है करो ना याद ना याद होंगी जैसे तुम्हें याद की थी मैं याद कर दी थी
0: भी है सुनाओ से ठीक ठाक चाय पीती बैठे हुए कि ना
4: जी अच्छा पी के तो याद आ गए
0: अच्छा चाय को कितनी देर ही तू सब पी गिंदे बे
4: बस बैठा तसले ना
0: कितने तरसले ना मेरे तरसले को तो 5 मिनट थी गया भाई यकीन करो 55 मिनट हूं प्याला खत्म थी ना पे मेरा
4: कमाल है मैं इतना देर में का नहीं थी
0: नहीं इतनी देर है जी ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ BGM ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰਹਿ, ਜੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਬਾਰਗਿਨ ਵਾਰ ਹੈ ਸਹੀ, ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਡ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਾਲ ਨੀ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਭਰਿਆ, ਗਾਲ ਤਾਂ ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਡੱਬੀ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਤਰਮੁਖ ਬੜਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਬਹੀਦਾ ਵਧਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੋ ਪਕੜਾਇਆ ਡੱਬੀ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਨਾ ਮਾਂਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ, ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਖ ਬਣਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਜਦਾ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਖ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੱਬਾ ਖੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਦਿਕ ਭਾਈ, ਜਨਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਸਨਰ ਹਮਾਰੇ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਐਂਡ ਆਨਰੇਬਲ ਸਰ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕੇ ਯੂ ਹਿਨਾ ਗੁਲਨੂਰ ਫਰੋਮ ਡੀਐਸ, ਕੈਸੇ ਆਪ ਔਰ ਸਭੀ ਲਿਸਨਰ ਜੀ, ਸਭੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਇਜ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਵਾਇਸ ਇਜ As usual, heart touching. Kesan lovely face wash, waqi amazing face wash hai. Aur Kesan ke sabhi face washes mein, mera favorite face wash jo hai, wo Kesan ka lovely face wash hai. Salam to all, salam to my ideal listener Aruba and cute Mahanoor. JKR 20th Jan tak goodbye. Achhi ji, ladki ek din ke liye aayi hai, theek hai janab. Aur aati janab alvidai.
5: Rab ki
0: 20 June tak kehte main nahi aaungi. Ek hi dafa ke bahut bada user hai, ye bahut badi user hai hamari bhai KU Hina Gul. Aur aapne dekha hoga ki jab hum coupons count karte hain to inke coupon bahut zyada hote hain, 80-70 coupon hote hain, kyunki inki puri ki puri family Kesan ke product use karte hain, puri ki puri. ऑयल से लेकर हैंड एंड फुट वाइटिंग क्रीम से लेकर क्रैक क्रीम और परफ्यूम तक, मेरे ख्याल में कि इनके घर में केसन के अलावा और कोई कंपनी नजर भी नहीं आती जो इनको जानते होंगे। तो ये जो है नूर मोहम्मद फैमिली, ठीक है जना, गुल की मोहब्बत है भाई केसन के साथ, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम खलील भाई, केसन प्लीज ये तो बताओ अम्मी को केसन दर्द रहता है अगर खाना खाती है तो, बहुत ज्यादा दवाई खाती है, मैदा की मरीज है, सब डॉक्टर के पास गई हैं, हाजमी फरकत है, फिर वही दर्द। रुमैसा जी, तो रुमैसा हाजमा कंट्रोल सिरप केसन का खरीदें, आप पिलाएं उनको, इंशाल्लाह मैदा सेट हो जाएगा, और दर्द का मसला है तो केसन का शिफाए दर्द ऑयल, ठीक है जनाब, ऑस्ट्रिच ऑयल, इनहेंस ऑस्ट्रिच ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपने उर्दू में सारा मैसेज लिखा हुआ तो लफ्ज आपस में मिले जुले हुए हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने थोड़ा सा अंदाजा लगाया है कि बहन यही कुछ कहना चाह रही होगी।
5: जैसे खिलता
0: हूं। जी सलाम भाई, आपको शो पहले की तरह। अच्छा जी भाई,
6: चेहरे की रंगत अब और भी निखरे सबकी।
0: अच्छा चलो ठीक है जी, ठीक है जनाब, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि जनाब हम आपके फायदे की बातें करते हैं, और जितने जल्दी आप हमारी बातों को पिक कर लेंगे ना जनाब, ठीक है जनाब, जितने जल्दी पिक कर लेंगे, पिक करने का मकसद ये है कि आपके जहन के अंदर हमारी बातें बैठ जाएंगी और आप हमारे प्रोडक्ट जाके खरीदेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, ठीक है जनाब। केसन के फेस वॉश खरीदें, बहुत अमेजिंग है हमारी क्रीमें, ग्लूटावाइट, ज़फरानी क्रीम, हमारे सोप्स, ठीक है जनाब, हमारा ऑयल और हमारा शैम्पू। ओह माय गॉड,
6: अब हर दिन बालों का नया।
0: आज हमारा विजिट पहाड़पुर का था भाई, दुकानदार नीचे नहीं आ रहे, एक एक कार्टन और दो दो कार्टन से, इतनी प्यारी प्रोडक्ट, इतना प्यारा रिस्पांस और इतने प्यारे रिजल्ट। अगर आप भी कोई शैम्पू बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि वो तो सिर्फ आपके बाल धोता है, तो हम कहते हैं भाई सिर्फ बाल नहीं धोएगा, केसन शैम्पू आपके बालों की नशोनुमा करेगा, आपकी खुश्की को खत्म करेगा, आपके बालों को नरिश करेगा, रूखे बालों के अंदर जान डालेगा, नमी लेके आएगा और आपके बालों को बहुत ही प्यारा बनाएगा। सिर्फ 3 महीने हमें दीजिए, 3 महीने केसन का शैम्पू इस्तेमाल कीजिए और फिर हमें बताइए कि इस शैम्पू ने आपके बालों के अंदर कितनी तब्दीली लाई है, क्योंकि जनाब ये विटामिन B5 और विटामिन B3 फार्मूला है जो कि आपके बालों की नशोनुमा करता है। जी जनाब, ये था हमारा आज का पैगाम।